सफली बिरक प्रभ स्वामी जिन चप्यो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सब लक्की बुक बुकानी

अरदास भाई अमरदास गुरु, अमरदास गुरु अरदास भाई, रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु सच्ची साई। अरदास सिख ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रीतम भगवती सिमर के गुरु नानक ले त्याय, फिर अंगिर गुरु ते अमरदास रामदास से होए सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हराय, श्री हर कृष्ण त्याय जिस दिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिय करुणानिद आवे ताय, सब ताय होए सहाय। दसवे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, सब ताए हुए साईं। दसा पातशाह तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पात दीदार दा ते अंतर के काल सजी। बोलो जी सतनाम। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादिया, चालिया मुक्तिया, हटिया जपिया तपिया, जिन्हनु नाम जपिया। वन चक्या तेग चलाए तेग वाए, देके अंदत कीता। तिन्ना प्यारियां सच्यारियां दी कुमायता ते अंतर के काल सजी। बोलो जी सतनाम। जिन्ना सिंघा सिंघनियां ने धर्म हेत सीस जिटे, बन बन कटाए कोपरियां लुहाइयां चरकरियां ते चरे। आर्य नाल चराए दे गुरुद्वारी दी सेवले, कुर्बानियां कीतिया धर्म ने ही हारियां। सिक्की कैसा स्वास नाल नभाए, तिना दी कमायता ते अंतर के काल सजी। बोलो जी सतनाम। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियांता ते अंतर के काल सजी। बोलो जी सतनाम। प्रित में सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहिगुरु नाम चितावे चिटावन का सड़का सर्ब सुख होवे। जहान जहान खालसा जी साहेब, तहान तहान रचो रियायत। देख देख फतेह बिरट की पैच, पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय। खालसा जी बोलो जी सतनाम। सिक्खां नूं सिक्की दान, केश दान, रहेत दान, बबेक दान, मसाव दान, परोसा दान, दाना सिरदान, श्री हरिमंदर साहब जी दे दर्शन इशनान। चौंकिया छंडे बुंगे जुगो जुग अतल धर्म का।

देवन पावत बेदा ताको कृपाहन अनुमानत महा मूर्ख छपेद न जानत महादेव कहा कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नह पिव आप आपनी बुद है जेते वर्णन पिन पिन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पहयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत बुज खान बाहुर रच दीनी काहू फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो संकर कैटा सिगरी

दुष्ट दुखते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाते लहो उबारी सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट दुखते लहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता खिल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोख न को छय करता श्री अस दुज जय पाए नयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख नत सह

जानंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तो पाया सहज सेती मन बजया वधाया राग रतन पर वारे परिया शब्द गावण आया सुदोत का वो हरी केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसरना अंगीकार हो कारे तेरा कार्य सब सवरना सुभनागला समरत स्वामी सुख्यो मन विसारे काहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किच है जिसते सो पावे सदा सुफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे काहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जन भूखा सब गवाइया कर संत सुख मन आय वसया जन इच्छा सब पुजाइया सदा कौरबान की ता गुरु विटहो जिस्ती आए है वड़े आईया क्या है नानक सुनहो संतो सब तरो प्यारो सच ना मेरा आधारो वज पंच शबद तित कार सपागे शबद बाजे कल जित कर तारिया पंच दूत तुद